0: कौन स्टूडियंटी का कबाइब्स का
1: Playing your favorite slow music only here on FM Radio Cebu 93.1.